0: एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये एक्सीडेंट वाला नेपाली पेशेंट का खास आदमी कौन है?
1: जी उसका घर का आदमी तो नहीं है, हम लोग उसका दोस्त है। कहिए उसकी स्थिति क्या है डॉक्टर साहब?
0: नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर है।
1: कैसी मुसीबत डॉक्टर साहब?
0: उन्हें ब्लड देने के लिए जब हमने उनका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके ब्लड में एचआईवी पॉजिटिव संक्रमण हुआ है।
2: एचआईवी पॉजिटिव यानी कि एड्स?
0: नहीं नहीं अभी उसे एड्स नहीं हुआ है, उसे तो अभी सिर्फ एचआईवी संक्रमण हो गया है।
1: ये एचआईवी संक्रमण कैसे हो गया डॉक्टर साहब?
0: अब सुनिए, एचआईवी संक्रमण होने का प्रमुख तीन चार कारण है। पहली बात तो ये कि बिना कंडोम यूज किए अधिक व्यक्ति से आप यौन संपर्क करते हैं तो ये संक्रमण हो जाता है। और दूसरी बात, निर्मलीकरण न किया हुआ ब्लेड, छुरा, सिरिंज का साझा प्रयोग करने से, मतलब कॉमन यूज करने से भी एचआईवी संक्रमण हो जाता है, समझ रहे हैं ना? और तीसरी बात, बिना जांच कराए किसी का ब्लड लेने या देने से भी यह संक्रमण होता है। और चौथी बात, अगर किसी स्त्री को एचआईवी संक्रमण हो और वो गर्भ से हो तो पैदा होने वाला नवजात शिशु को भी एचआईवी संक्रमण हो सकता है। बस यही सब कारण है, ध्यान रखना चाहिए आप सबको भी।
2: ये रोग का उपचार करने से कितने समय के बाद ठीक होता है डॉक्टर साहब?
0: अब सुनिए, अब जब किसी आदमी को एचआईवी और एड्स होता है तब ये कभी ठीक नहीं होता है।
2: कभी ठीक नहीं हो जाता है, क्यों डॉक्टर साहब?
0: क्योंकि इस रोग का अभी तक कोई दवा का पता नहीं।
1: तब ये इतना खतरनाक रोग है तो इसे अब हम क्या करें डॉक्टर साहब?
0: अब बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, इसका ख्याल रखना चाहिए आपको, बस अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए।
1: इसका रेख देख करने से यानी इसको छूने से ये रोग हमें संक्रमण हो जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब?
0: नहीं नहीं, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को छूने से, साथ रहने से, उसके रेख देख करने से, कपड़ा तौलिया जूता चप्पल प्रयोग करने से ये सब नहीं होता है।
2: अच्छा, तब तो घबराने की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब?
0: हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पेशेंट ने, आपके पेशेंट को थोड़ा मानसिक तनाव हो गया है, इसलिए वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा, समझ रहे ना? तो उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए, अभी उनको केयर एंड सपोर्ट का बहुत जरूरी है।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, अगर समय में अपने उसका ख्याल न रखते तो जो कुछ भी हो सकता था, क्या हम लोग उसे मिल सकते हैं डॉक्टर साहब?
0: हाँ हाँ जाइए मिली, लेकिन धीरे से बोलिएगा, अभी उनको पता ना चल रहा कि उनको एचआईवी संक्रमण हो गया है। हाँ, एक दो हफ्ते के बाद हम विस्तार से उनको बताएंगे, समझ रहे हैं ना?
2: अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।

0: सुनो, इस लड़के को अंदर ले जाकर रखो ना। दोषी आई है और गए होगी, नहा धाकर उसे आराम कराओ जाओ।
1: अच्छा मैम सर, चलिए।

0: हाँ तो मैम साहब, माल कैसा लगा?
1: अरे भाई, जब तुम माल आते हो ना, उसमें मैंने कभी कुछ कहा है क्या? माल तो एकदम अच्छी है, फिर भी आते रहना।
0: तब तो मुझे छुट्टी दे दीजिए मैम साहब।
1: हाँ हाँ, मैं लाला को फोन कर दूंगी, बस वहीं से अपना रुपए ले लेना, ठीक है ना?
0: ठीक है मैम साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ अभी, नमस्ते।
1: हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते।